0: हेड वॉइस यानी वह मंत्र मांगी तरह वटे है क्या गड़क पीना हेड वॉइस यूड लिंक करना है क्या इटा मंत्र वे सेकंड वॉइस की तो मटे पड़ता नॉट सेमी टोन ने क्या के तने का उठते ना होना ये
1: इंटरल्यूड्स उल्टे आगे वेरिएशंस एक अकेट करा एक मांगी तरह ने हम तो प्लस पॉइंट का ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला